कृपा जल देहे नानक सारं को होए जाते तेरे नहीं वसा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहिया में साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर मंडल मंडा ही कर साधु अंजलि की वड्डा ही।

भक्तों सदा विगास सुने दुख पाप का नाश मन्ने की गत कहीं न जाए देखो कह पिछह पुछताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन न जाने मन कोई मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ सु प्रगट जाए मन्ने मगन चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन को मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवार साधार मन्नै त्रै तारे गुरसिख मन्नै नानक पवह ना भेको ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दर गहमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जेको कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौ धर्म दया का भूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर पराय होर तिसते पार तले तिसते पार तलै कवण जोर जी जा तिरंगा के नाव सब ना लिखिया बुड़ी कलाम एह लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया किता होए किता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्खंद घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर करजा हे जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाओ हे असंख पापी पाप करजा हे असंख कूड़ियार कूड़े फिरा हे असंख मलेश मल भाखा हे असंख निंदक सर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह हे सिर भार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हे लिखे तिस सिर नाहि जे फुरमाए तिव ते पाए जेता कीता तेता नाव बिन नावै नाही को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ।

पण जे को कथाय त्यंत नंद तथा लो लो आकार जिव जे हुकम तिवै तिव कार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाव हरा धीरज सुनियार वैरण मत वीद हथियार पौ खलावन तपताव भांडा पाव अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जनी नाम ते आया गए मसकत कहा।

वर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूत हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृसृक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम्य हैं, अजम्य हैं, अपूत हैं, अशूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान मान्य नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति बेपूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोग ऐश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभोगते नमो जोग जोगे स्वरम परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रे देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सांग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोग्य नमो अस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो अष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदान बुद्धदान बृद्धकर्ता दूरदर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं शेदियपेदियनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तसतहमं तेरा जोर चाचरी शंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वंग नयनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजी नमस्त्वंग अपंजी नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराज नमो साजे नमो साह साहे नमो मह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग

करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, तृत के तन है, जग के कर्ण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपासी है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, अथपा थाप है, आकृताकृत है, अमृता अमृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, आकृताकृत है, तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, आकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भव भंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात शांत

de nomo bidbide. नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशा से नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी।

अपह अभय अपु अदु अनास अकास अगंध अपंध अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते सदा सचिदानंद सुतरं प्रणासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में

तीर्थ नाम दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब वैसो विचार हजार को देखा है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिनु एक ना लेखा है।

ना हलाएंगे। तोर मरी तोर अरीर मरोर मवासन, तोर अरीर मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान।

अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जिन्नर श्री पथ के।

ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, बैस बितायो, साच कहूं सुन ले हो सब। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल

नमस्कार तस्वी को हमारी सकल प्रजाजनी आप सवारी सेवकन को सावकन सुख दियो सत्रन को परमो बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशाने कट कट के पट पट की जाने जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन जेते बदन सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरह निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

कै रूप अरूप स्वरूप पारंग भयो राव कहीं भूपाय अंडर जेर जसे तिजकिनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंप हुआ जुगा स्वरूप सुयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगर हो दोष्ट जिते उठपत उत्पाता सकल मलेश करोरन कहता। जियस तुई तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या है ताकि काल निक नहीं है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि हो ताकि ताप तन कमय हरि हो रित सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सके न कोई।

भाई संबत सत्रह सहस भणिजय अर सहस फुंतीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रो ग्रंथ सुधारा सवैया।

आपे हुकुम बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। तत्तै सार ना जानी, तत्तै

माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये। एवड दाता जे अगर मैं आहार पहुँचावे, उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु अपनी लो लावे। अपनी ले व्यापे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कह नान केवड दाता, सो क्यों मनो विसारिये। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करते, खेल रचाया जात स्पाणा ता जम्या। परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया, अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोहि उपजै भाउ।

साम कहे स्तंभ स्वामी सच में असे सच रहे सब को सच समावेरे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सू नै लै प्राश्त जाए नानक तो मुखंत्र पाए।

हरि साहिब हर दयाल कृपा करता सहायकार कराए से सो सेवक सेवा करे जिसन हुकम मनाए से हुकम मने होवे परवान

दोस्ती पंडू चले राव पंड मुगा पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे दा जान पंडू ही पंडू पदे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाई।

0: जय मात पिता सतमीत न भाई
1: नाम तेरे संग
0: जय महा भयान दूत जम धल
1: केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत भारी
1: हर को नाम खिन मह उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नहीं तर
1: हर को नाम कोट पापर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख घनेरे
0: सगले श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जगत होए सुखिया
0: लाख करोड़ी बंधन पर
1: हर का नाम जगत ने सुतरे
0: अनक माया रंग तेखना बजाव है
1: हर का नाम जगत अगावे
0: जे मार्ग एहो जात अकेला
1: हर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नामन सदा त्याई है
1: नानक गुरमुख परम जत पाई
0: छूटत नाही कोट लख बाही
1: नाम जगत पार पराई
0: अनक विघन जह जाए संघार है
1: हर का नाम तत्काल
0: अनक जोन जन्मे मर जाम
1: नाम जगत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कबूना तू वह
1: हर का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाईए साध के संग
0: जय मार के गणे जाए ना कुसा
1: हर का नाम उहा संग तोसा
0: जह पेंडे महा अंध गवारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पन तेरे को नाश है यानो
1: हर का नाम ते नाल पहचानो
0: जय महा प्यान तप्त बहु काम
1: हर के नाम की तुम परेशान
0: जहां त्रिखा मन तुझे अकरख है
1: नानक हर हरे अमृत करके
0: भक्त जना की वर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उतरे जन को
0: हर दस करत संत दिन रात
1: हर हरे औकत साधक मात
0: हर जन के हर नाम न दान
1: हर रंग जल की नो
0: दान मन तन रंग रते रंग एक
1: नानक जन के व्यर्थ विवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जोगत
1: हर के नाम जन को तृप्त भोगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जगत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई
1: हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जगत का सुनाए ब्योग
0: जन रता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के मालक है जिन्ना
1: हर तन जन को आप राधिना
0: हर हर जन के ओट सताने
1: हर प्रताप जन अवर न जाने
0: ओत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाद नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भक्त भक्त नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त भो करे
1: नानक जन संकेते तरे
0: पार जाते हो हर को नाम
1: नाम तेन हर हर गुण
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम संत दर्द दुख लता
0: नाम की महिमा संत रद वस
1: संत प्रताप दत्त सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी पाई है।

0: जह प्रसाद छति ही अमृत खाए।
1: तिसा कर को रख मन माए।
0: जह प्रसाद सुगंधन तिन लावे।
1: तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जह प्रसाद बसे सुख मंदर।
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर।
0: जह प्रसाद गृह संग सुख वसना।
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना।
0: जह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
0: जह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे।
1: तिसे त्याग कर तवर लवावे।
0: जह प्रसाद सुख सेज सुहिजे।
1: मन आठ पैर तांका जस गावी जय।
0: जह प्रसाद सबको माने।
1: मुख तांको जस रसन बखाने।

0: सास नेह करनाथ।
1: जय प्रसाद पेके बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जय प्रसाद सुख सहजे वसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चले।
1: जय प्रसाद सब पूरन फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे।
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार।
1: इस प्रभ को

0: साध के संग मुख उज्जवल होत,
1: साध
0: के संग मिटे अभिमान,
1: साध
0: के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध
0: के संग पाए नाम रतन,
1: साध
0: की महिमा वर्णे कौन पराने, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग आ वह पस पंचा, साध संग है सबकी रेन, साध के संग न कत होता वह, साध के संग आते पिन, साध संग दुश्मन सब मीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध के संग ना ही हो ताप, आपे जाने साध बढ़ाए, साध के संग ना कब होता वै, साध संग बस्त अगोचर लह, साध के संग बस थान ऊचे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग पाए नाम निदान, साध के संग सब कुल उधारे, साधु के संग सुतन पावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध के संग सर्व थान गम, साध के संग ना ही कुछ काल, साध के संग कुलूखत हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, जो इच्छे सो ही फल पावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध के संग न मनते बिसरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साध संग पे आज्ञाकारे, साध के संग मिटे सब रोग, साध की महिमा वेद न जान है, साध की उपमा तह गुनते दूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची,

0: राम ज्ञानी की सब पर मया,
1: राम ज्ञानी के कुछ परा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा रक्तवासी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल चुकता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं मिलास।
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा।
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी के तावत बंदा।
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सो पल पला।
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार।

0: ब्रह्म ज्ञानी को जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या ना जाय अदाखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कहुन बिखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं माता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण मुक्त दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: राष्ट्रपति जिसके अंतर राज अभिमान जो जाने में जोवन बंत आपस को कर बंत कहाव है तन भूमिका जो करे गमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसाव है तनवंता हुए कारगर भाव है वो लश्कर मानो खूपर करे आस सबते आप जाने बलवंत किसे ना बदे आप हंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तार है अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं ध्रुव है आपस को जो पला कहाव है सर्व की रीण जाका मन हुए जब लग जाने मुझते कछ हुए जब यह जाने मैं कुछ करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टुटै
1: प्रसाद नानक हो छुटै
0: सहज कटे लख को उठता है अनक भोग बिख्या के करै बिना संतोख नहीं को राज नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावन आपे आप कर्ण करावन करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो कछ किन्नो सो अपने रंग बुझा देखे करे बबेक मरे ना वैनसे आवे ना जाए आप अवदेश समझे आप आप किन्नो अपन वस्तार उसते पिन कहो कुछ होए अपने चलत आप करने हार मन में आप मन अपने माहे सत सत सत प्रभ स्वामी भला भला भला तेरा रूप
1: सुंदर
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी

मानुख की टेक वृथि सब जान, जिसके दिए रहे अकाए, मारे राखे इको आप, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, उस्तत मन में कर निरंकार, निर्मल रसना अमृत पियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, चरण चलो मार्ग गोविंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, बड़पागी ते जन जग माहे, राम नाम जो करे विचार, मन तन मुख बोले हर मुखी, एक एक एक पछाने, नाम संग जिसका मन मानिया, गुर प्रसाद अपने आप सूझे, साध संग हर हर जस कहत, आंदन कीर्तन केवल बखियान, एक ऊपर जिस जन की आसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, जब देखो तब सब किश मूल, न किश जन्मे न किश मरे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अविनाशी नाही किश खंड, अलख अपिय पुरख परताप, जैन प्रभ जाता सो शोभा बंत, प्रभ के सेवक सगल उदारन, आपे मेल लय कृपाल, उनकी सेवा सोई लागे, नाम जपत पावे विश्राम। सदा सदा बस जो किश करे सु प्रभ के रंग, सह सभाए हो वैसो होए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए,

बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।